सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 इन्टरनेट अनलाइन विजय एफएम को फेसबुक पेज एवं यूट्यूब संगे हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो मोबाइल एप्स मार्फत संसारभर एकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजे को विजय खबर में माया खडेल को नमस्कार। विजय खबर में प्रमुख खबर का मुख्य शीर्षकहरू। चितवनमा हालसम्मकै धेरै वर्षा, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नारायणघाट मुगलिन सडक बन्द, यात्रा नगर्न आग्रह।